गज गज गरग जावे सुनहाल हो जावे सत श्री अकाल घर बार अकाल देग देग फदे खाल से पंथ दी दिरा

प्रसाद तुम वर छंद हर जन्म मरण विहीन हर चार चार विहीन अकल रूप अपार अंचल तेज अवतार अंचल तेज अवतार नानक विज रूप दुरंत सब जगत जल महारंत दस तिलक भोग प्रभान दस चार चार प्रधान दस चार चार प्रधान अकल रूप अपार सब लोग स्वरूप अपार कल काल धर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप अनखंड अजल धाता अनखंड भेद अचेत वंचात गाद भेद जलात भेद जिन भेद निगम का अंत मुझे निर्भर निगम के अंत अनविचार अतुल प्रताप अनखंड अजल प्रताप अनखंड प्रताप जेकी न जगत प्रसार जेयोगी चार प्रसार जे गुरु का खंड नरता उपचंड प्रचंड जे अंत ब्रह्मांड किने सब चौद ब्रह्मांड किने जगत प्रसार जे गुरु प्रसार जे गुरु प्रसार जे कोट इंद्र निर्वार जे ब्रह्म विष्णु विचार जे ब्रह्म कृष्ण प्रचार जे निरात को नर भूल कृष्ण बिंदन केंद्र तेरी चंद्र चंद्र केंद्र तेरी पचार कुमार तेरी चंद्र सारा तार तेरी चंद्र तार गुहार तेरी दरवार चार तेरी पिछवार सर जलाब तेरी राम कृष्ण सर रूप तेरी राम कृष्ण सर रूप तेरी कुक्ता भानंत तेरी कुक्ता भानंत तेरी पितृ सिद्ध भानंत तेरी सार सिद्ध भानंत तेरी सुख पुराण तेरी अग्नि होत अनंत तेरी यज्ञ हो दुरंत तेरी विद्वास निरास तेरी योग विद्वास उदास उदास कहूं ने विधि कर्म करांत कहूं ने मन हार दुरंत कहूं पाप दान अपराध कहूं जग कर्म अवतार कहूं उदार कहूं अग्नि होत अनूप कहूं ने आयन होत अनूप कहूं सारे सारे तरीत कहूं विद्वास विपरीत विद्वास कई देश देश विरांत कई देश देश विरांत कई देश जब मैं जाप हूँ सरदार पर जाप सरदार पर ताप कहूँ बास बने करांत कहूँ ताप बने करांत कहूँ ताप धरने सवार कहूँ राजदीप वार कहूँ राजदीप वार कहूँ लोग

चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन तुजा फुरंकन फणी फुंगारन जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय ओसी मैखासुर मर्दन भूम आकाशल उर्ध अथे दामनी प्रहासन सुछभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोध ब्रह्माचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती नल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय होशी मैखासुर मर्दन पाप विनाशन धरम करे अखोग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उवारण शोध मते फणियर भंगारण बाग बकारण सस प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल

करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रत्येजन अष्ट भुजे जय जय हो से महासुर मर्दन भरम विनाशन धनम तुझे गुंगुरु गमंगण सहस जमंगण फणियर।

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय बताल आकाशन ले संकटी निवारण धम उदाहरण तेज प्रकार गण तुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी सहस्र प्रकार खण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज विलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज

घंट का बिराजे रुंझुण बाजे भ्रम बाजे सुन सुरंगो किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुकोप राजे मथ उरंग दुर्जन दल तछे मंथन रिछे सब नवजे रोरण जय जय हो सी मैं का सुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर पिते धूमराज बिजुन सन प्रलय प्रजुन संजय।

दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रतर खण वितल तले अष्टायत वाहन बोलने वाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी महासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्द

डुगडुगी दमंगे बाघ बबंगे मुजाफरंगे शुद्ध गते जय जय हो सीमा का सुरमर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुरमारण नरक निवारण बद दो दारण एक बटे पापान बिहंडन दुष प्रचंडन खंड।

अनंत दुख दोग रहत जे नेत नेत सब भेद कहत। कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सेवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए। अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै ना सब रोग शोक तेरत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप। करुणा निदान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनवंजनात जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जह जात पात नहीं भेद भरम जह रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार। जानी न जाय जह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेद कहे नाम तास है कमन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र प्रात। करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चिहन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की कर्तपाल। उर्धंग बिरहा सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिच तेज अनभिजता। जल धल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निज दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोह तहता उतार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जगिया।

दीनन की प्रतपाल कर नित संतु बार गनी मन गारे पच पशु नग नाग नरादेव सर्व समय सबको प्रतपार है। पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहारे। दाहत है दुख दुखन कौजल दुजन के पल मै दल डारे खंड खंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद्मावत वेद कते वेदो जारे रोज ही राज बिलोकत राज करो गुरुहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे हंग बेव न भेव लख्यो ब्रह्म स्यो ब्रह्माए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव धके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किन श्री पद्मावत पाए।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सुबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छय है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्री पद्मा।

वेद बतावे खोज थके सभी हैं खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से समूह मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तय को मन में जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्वाण सब बचहारे। भेद न पाय सके अन भेद को खेद है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। याद नाथ अगाध बेगद वेख जप्यो तिन्हि गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश बिरो कर वेश बोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बो न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल बजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छेत छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध

पूर्वी न पार पावे हिंगलाई माल त्यावे गोर कर तेजी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साध पौन साधना किते बंद यार बके यार भी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेले पीर भंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीशन आवे तिपति दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तो हृदय तिन्ह पूरण प्रताप पायो सर्वधन दाम फल फूल स्यों फलत।

पूरन अवतार निराधार है न पार अवार पाई न पार वे अपार के बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूं के रस है अनासी के मानी है जंत्र हो न जात जा की बाप हो न माय ता की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अन मानी है तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है के निजंत्र के जानी है तेज हूं कुतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के

जान को बचैया है, मान को देवैया है, जंजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के श्री है नर है, विश्व को वर्ण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार वार हूं को पार, जगो की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे बसी हल विद्या पूर्व भी न पार पावे सत या नाश है, देवन को देव महादेव हुंग देव है, निरंजन अभेवनाद अद्वय अविनाशी है, हंजन विहीन है निरंजन।

राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ वो जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के चीर कैसी छीरावत छास कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिहारो महेरा से हुसैन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा के सी रामपुर सूरा से सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी गोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चांद्र गिर चांदनी सी चांदा गढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान सी बिलंदवाद गिरत तिहारी के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भकरी गंधारी गोरे कखरी गिरदे जाचारी बौन के आहारी तेरो नाम जायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र देता बिना

होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सभय तुम घावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सभय कर तारा मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारी है चुन चुन सत्र हमारी मारी है आप हाथ दय मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हूजो सदा हमारे पच्छा श्री असधुज जो करियह रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो परी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रगासा सकल काल का किया तमासा।

तहे हमारा। जम काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकण को सिव गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह पद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। छींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब

धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, नरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताक

का छीनत नह भव आप आपनी बद है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखान जाए पसारा केह पिद सजा प्रथम।

चौपई सम सतरे सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुदी अष्टमी रव वार तीर सत द्रव ग्रंथ।

दुष्ट खिन माह बिदारे अन्न तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे जिस सिमरत।

बच्चे संजो होए उड़वे सुबह मले की कर कुड़ा पासार कंका बाजे पते का नहीं कंकंपार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुके स्वयं भाव समसंगा।

दरबार में गुरु दरबारा सत्र नमस्कारा लक्ष्मी गणित दरबारा सर्व देवते नमस्कारा तोरा नान गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण गुरु अवतार जग में गुरु विराज रही श्री अब्दुल गफ्फार सचखंड के दरबार।

तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दे बाण सच्चा तेरा हुकुम सच्चा।